0: हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते सर्वोपनिषद गाव दुग्ध गोपाल नंदन पात्र वर्ष सुदी वक्ता दुग्धं गीतमीतं महात् वसुदेव सुतं देवं कंसचारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता दशम अध्याय विभूति योग हन्तति कथयिष्यामि दिव्य हि आत्मविभूतय पदन्नतो कुरु श्रेष्ठ नास्ति अन्तो विस्तरिष्यामि अहम् आत्ता गुराकेशु सर्वभूतो आशयो स्थितो अहम् आदि च मध्यं च भूतनम् अन्त एव च श्री भगवान बोलेन हे कुरु श्रेष्ठ जेहेतु आमार विभूतिर विस्तार अंत नहीं सेहेतु आमार दिव्य विभूति सकलेर प्रदान कयेकटिर कथा एखाने बोलछि आमि सर्वभूतेर हृदयेर अवस्थित आत्मा आमि तादेर आदि मध्य ओ लय आमि तादेर उत्पत्ति ओ लयेर कारण सकल जीवेर आत्मा परमात्मार एक एकटि अंश विशेष ओ परमात्मा हतेई सकल जीवात्मार उत्पत्ति परमात्मार अंश हिसेबे तारा बेचे थाके ओ मृत्युते परमात्मार मध्ये सकल जीवात्मा लीन हये जाए आदित्यदेर मध्ये आमी विष्णु ज्योतिष्कदेर मध्ये आमी ज्योतिर्मय सूर्य मरुद्गणेर मध्ये अर्थात 49 वायुर मध्ये आमी मरीचि बा प्रदान आवह वायु एवं नक्षत्रगणेर मध्ये आमी चंद्र ओम गंगा गीता स सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मबली ब्रह्म विद्या तीसंदा मुक्तिगेहिनी अद्वमत्ता चिदानंदा भग्नी भान्ति नाशिनी वेदत्तयी परानंदा तत्तो ज्ञान मंजूरी इत्यत्तानि जपेर नित्यं नरो निश्चलो मानुषु ज्ञानं सिद्धिं लभेत नित्यं ततन्ते परमं पदम् ओम सभ्ये भवन्तु सुखिनः सभ्ये सन्तु निरामया सभी बद्धानि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखभागो भवेत् सकलेई सुखी होक सकलेई रोगमुक्त होक सकलेई मंगल लाभ करुक केह जन दुःख भोग ना करेन ओम शांति ओम शांति ओम शांति
1: এতক্ষণ পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করলেন অসীম চৌধুরী।
2: বাংলাদেশ বেতার আজ বেলা একটা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে নদীবন্দরগুলোর জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস। রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, যশোর, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় 60-80 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরসমূহকে 2 নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। এছাড়া দেশের অন্যত্র একই দিক থেকে ঘণ্টায় 45-60 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরসমূহকে 1 নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। আজ সন্ধে 6টা পর্যন্ত সারা দেশের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের 2-1 জায়গায় অস্থায়ী দমকা অথবা